0: आप भी अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर आएं। वेज थाली, चना भटूरा, अमृतसरी कुलचे का स्वाद बाय वन गेट वन ऑफर के साथ जरूर उठाएं। फ्रॉम 10 AM टू 8 PM सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशन 15 फेंडर वे 85 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट 275 गार्डन ब्रूक ट्रेल इन ब्रैम्पटन।
1: क्या बात है, वेरी गुड। सो जरूर सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट ते गेड़ा तुसी मार के आओ, दो बोल सुन लिए ते फिर वापस आके अगली गल भी थोड़े नाल कर दिया। नहीं अज तां बनदा यार दिलजीत थोड़े आ रहे अपने शहर दिलजीत दा गाना सुनदे हैं जिहड़ा अजकल बहुत ही मशहूर है।

सतगुरु होए दयाल तसरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल न कबहू झूरी है, सतगुरु होए दयाल त दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल त हर रंग मानिए। दिते हुए सारे रंगा नूं मानदे हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर खूबसूरत शाम खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान लैके जिंदगी जिंदाबाद ते चढ़दी कला दी पहचान रेडियो उड़ान प्रभ संधु दे नाल।

ठंडियां मिठियां छावां वर्गी, मां बोली है मावां वर्गी, ठंडियां मिठियां छावां वर्गी, बाल पुने दे चावां वर्गी, ते सजन दियां खुलियां बावां वर्गी, खुलियां डुलियां थावां वर्गी, मेरे पिंड नू जांदे रावां वर्गी, आओ इस दी शान वधाइए, एदे सोले रल मिल गाइए, मां बोली ही बोलदे रहना, नवी पीढ़ी नू ए समझाइए, क्योंकि बोली अपनी ते सानू माण होना चाहिदा है, बंदा जदों बोले ता पछाण होना चाहिदा है, अपनी पछाण वाला दीवाना बजा दियो।

0: yourself, यार, enjoy yourself.
1: बहुत बढ़िया, घर चलो, घर जाके पता चल जाएगा एवडेक्स कहाँ पे.
0: हाँ, तेनू पता चलेगा. इत्थे आ मैनू बताना वाली बात है. बड़ा मजा आता. इस किस्म की जो चीजें होती है ना, बड़ी, यानी आप समझिए, हंसना भी
1: जरूरी
0: है. लॉकिंग रिलीफ द स्ट्रेस, अरे बहुत जरूरी है. एक शीशा खून चढ़ाने के बराबर है मेरे भाई. आजकल कौन हंसता जिसे देखो शक्ल लटकाए हुए है. अरे भाई क्या प्रॉब्लम हो गई? नहीं, गैस के प्राइस बढ़ गए. मैं बोला भाई गैस को प्राइस बढ़ गए को मत रोइए, ड्रम को हटाने का सोचिए. जो लाया प्रॉब्लम उसको हटाइए, प्रॉब्लम का मसला हल.
1: छोटियां छोटियां खलील जी टेंशन है ना, अपने आप ही पाल रखी है. वो कोई आदमी सी कोई तो दूसरे दोस्त नु कहंदा यार दुनिया दे ना हालात बड़े खराब हो गए. दूसरा दोस्त कहंदा भी हालात दुनिया दे खराब हो गए तू कीते? कहंदा नहीं. कहंदा तू ठीक कर सकदा है? कहंदा मैं ठीक नहीं कर सकदा. फिर कहंदा एंजॉय कर अपनी लाइफ नु, तू टेंशन तो की लेना दुनिया दे हालात किस तरह दे हो गए. अपने आप ते फोकस कर, अपने आप नु खुश रख. चलो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया.
0: शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल सबको.
1: सो दोस्तों तुसी भी कोई गलबात शेयर कर सकते हो 647-367-5353 647-367-5353. लो एक खूबसूरत जिहा पुराना गाना नवी बोतल दे विच भर के तुहाडे सामने प्रेजेंट करन दी कोशिश है. उम्मीद करदा तुसी उस नूं पसंद करोगे. ऑल द बेस्ट.

0: Mohan. Contact us at richmohan.com.
1: जे तुसी भी करना चाहते हो अपना खुद का रेडियो प्रोग्राम तो आज ही सानू कॉल करो 647-504-15

उम्मीद है कि तुसी सब ठीक ठाक हो, इंजॉय कर रहे हो इस बड़ी ही खूबसूरत शाम नू। शाम दे विच जुड़ चुके हैं थोड़े नाल एक बार फिर प्रोग्राम पंजाबी दारा लैके ठीक 9 बजे तक थोड़ा साडा थोड़ा साथ।

सूखे हरे की एक माहे अमृत दृष्ट संच जीवाए काटे कस्तूरे को सेवक होती नहीं अपनी सेवा मिल गई तुम्हें मन आशा कई दया का सुगुरता सा दुखना से सुधराए समाए तीन न पाई जाए फरमाए निज पुण्य मुझे गुर मिले नानक के जन सो फल फले।

दात प्रब कृपा ते पहे सोहेले जन्म जन्म के बिछड़े मेले रहा सिमरत सिमरत प्रब का नाम सगल रोग का विनसिया था सहज सुबाए बोले हर बाणी आज पहर प्रभ सिमरो प्राणी।

0: जिस सिमरत दुख सब जाए, नाम रतन बसै मन आए। जब मन मेरे गोविंद की बाणी, साधो जन राम रसन बखानी रहा। एक बिन नाही दूजा कोई, जाकी दृष्टि सदा सुख होए। साजन मीत सखा करे, हर हर मन महलेख। रब रहे सर्वत स्वामी, गुण गावे नानक अंतर जामी। गौरी भगना महिमा, कोट बिगन हिरे खिन माहे। हर हर कथा साध संग सुनाहे। पीवत राम रस अमृत गुण जास, जप हर चरण मिट्टी खुद दास। सर्व कल्याण सुख साजन धान,
1: जिगोजी एंड विलियम्स पार्कवे में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-455-7333 पर कॉल कीजिए। 9054562733 अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
0: आखद मंत्र तन सब छाज, करना हार हृदय महताज। तज सब परम भजो पार, कहो नानक अटल एहु धर्म। गौरी महला पंजवा, सांत पई गुरु गोविंद पाई। ताप पाप बिन से मेरे पाई, रहा राम नाम।

रहा। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की पैज रखी करता रे। बादशाह साथ सब बस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निर्भव होए पलवान।

मह निर्गुण सगुण तेरे रहा, पंच बिखा दी एक गरीबा रात हरा तनहारे, खेत कर है अर बहुत संता रहे आया शरण तुहारे। कर कर आयो अनेक को पाती, चूर है सतगुण नाया।

0: taste, a product of Samosa and Sweet Factory at all leading grocery stores.
1: आसन में मिट जाए करके पासंत मिले मोहे दिन ते तीरज पाए संते मंत दियो मोहे निर्भो गुर का सब कमाया जीत ले ओए महाबिखारी सहज सुहेली बानी कहो नानक मन पया परदासा पाया पद निर्बाणी और मोहल्ला पंजवा
2: ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨੇ ਮਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨੇ ਸੰਤ

हमने तोड़ा चंडिया जो कि आपने भाई जाना हमने तोड़ा चंडिया जो कि आपने भाई

जी हाँ, आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साई राम, या अली मदद। और आपका जो वीकेंड है इस बार बहुत ही सुहावना है, मौसम है बहुत ही सुहावना है, उसी तरह का हम आपके लिए गीत सुनाएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, किचन की गैजेट्स आपको बढ़िया बढ़िया चाहिए, टीवी बढ़िया चाहिए, आउटडोर फर्नीचर चाहिए, या बारबेक्यू चाहिए, जो कि डिजिटल आजकल बहुत बढ़िया बन आ गए हैं, जी हाँ, तो अब अगर आपने बढ़िया फर्नीचर, बढ़िया बारबेक्यूज लेने हैं, बढ़िया टीवी लेना है, आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स.com पर जाइए, अपनी फादर्स डे की शॉपिंग अभी कर लीजिए, बढ़िया बढ़िया बार्गेन आपको मिलेंगे। और जानकारी के लिए आप उनको ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 9057990045। आपको सोने के गहने लेने हैं, डिजिटल गहने लेने हैं, शादी, एनिवर्सरी, बर्थडे और किसी भी मौके के लिए गहने चाहिए, तो आप अल मदीना ज्वेलर्स पे जाइए, एयरपोर्ट रोड पे मोटर में मौजूद हैं अल मदीना ज्वेलर्स। और फादर्स डे के लिए भी अभी से आप उनसे शॉपिंग कर लीजिए, ऑर्डर कर लीजिए। ऑर्डर करने के लिए 905-673-0100 पर कॉल कीजिए, 9056-730100 पर कॉल कर लीजिए। तो आइए आपको बढ़िया सा गीत सुनाते हैं मौसम के बारे में ही। तो पकीज़ा फिल्म जो एक मीना कुमारी जी की लास्ट फिल्म थी, तो उसी का आपके लिए गीत सुनाते हैं, तो उम्मीद रखती हूँ आपको पसंद आएगा। अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको आपने प्रॉपर्टी लेनी है किचनर वाटरलू गोल्फ में, तो आपने स्टीव थिंट को कॉल कीजिए, 519-546-1260 519-546-1260 पर कॉल कर सकते हो। और अब अगर आपने अभी तक अपना टैक्स नहीं भरा है, तो गुरप्रीत रोड और अपना टैक्स भरवा लीजिए, 416-382-8135। अब वीकेंड में नियाग्रा फॉल आए हो तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया, नियाग्रा फॉल में मेन स्ट्रीट पे जब आप चिपवा की तरफ जाते हो, वहाँ टिम होटल है, फिर ब्रिज के ऊपर से जा करके बहुत ही बढ़िया पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, बारबेक्यू एंड पार्टी, वहाँ पे 70 लोगों की कैपेसिटी की सीटिंग है। तो अगर आप नियाग्रा फॉल में बर्थडे मनाना चाहते हो, तो आप बारबेक्यू एंड पार्टी वालों को कॉल कीजिएगा और अपनी पार्टी बुक करिएगा। और खाना उनका एकदम बहुत ही स्वादिष्ट है, और खास करके चिक्कर छोले बहुत बढ़िया बनाते हैं वो। तो आप आइए सुनिए ये गीत।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, या फिर आपने कोई बढ़िया सा आपको टीवी चाहिए, बढ़िया बैक यार्ड आपको बारबेक्यू चाहिए, फर्नीचर चाहिए, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे ब्रैम्पटन में मौजूद है, दूसरी लोकेशन की ग्वाल्फ में है। तो आपने फादर डे की शॉपिंग करनी है, अभी शॉपिंग करिए, ऑर्डर कीजिए topchoiceelectronics.com, और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045-799-0045। आप घर खरीद लेते हो तो फिर आपको मूव होना पड़ता है। समर में बहुत लोग मूव करते हैं क्योंकि उनको नए नए घर खरीद रहे हैं, तो आपको मूविंग करनी है तो HK मूवर्स का नाम याद रखिए, कनाडा भर में आपकी मूव होने में मदद करते हैं। तो अभी से अपना ट्रक बुक कर लीजिए, बहुत सारी उनकी टीम्स हैं, आपके सामान को बड़ी हिफाजत से पहुंचाते हैं। 416-524-4 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को कॉल कर लीजिए। आइए, अब आपको एक दुपट्टे के बारे में बहुत सारे गाने लिखे गए हैं, तो आपको ये गाना सुनाती हूँ ओल्ड बरसात फिल्म से।

जी हाँ, तो ये था आपके लिए गीता जी का गाया हुआ गीत। अब आपको एक और गीत सुनाएंगे, पर पहले आपको बता दें कि अगर आपने सोने के गहने खरीदने हैं, सोने की बार खरीदनी है, तो आप अल मदीना ज्वेलर्स में जाइए, और अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-673-0100 पर कॉल कीजिए, 9056-73-0100। तो अब आपको मूव होना है, तो मूव होने के लिए आप एच के मूवर्स का नाम याद रखिए, उनको कॉल कीजिए 416-524-7004, अपना ट्रक बुक कीजिए, और कनाडा भर में आपको मूव करने में मदद करते हैं और आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो एच के मूवर्स 416-524-6704। अब आपने अगर टैक्स अभी तक नहीं भरा है, तो प्लीज रोडे को कॉल कीजिए, पर्सनल हो या बिजनेस, 416-302-8835, 416-302-8135 पे आप उनको कॉल कर सकते हो। तो आइए अब आपको ये प्यारा सा गीत सुनाते हैं।

जी हाँ, तो अब आपके लिए जो हफ्ता है वो बहुत ही जल्दी बीत जाता है, क्योंकि आप व्यस्त रहते हो, काम इतना होता है। अब मौसम जब थोड़ा बेईमान होता है तो फिर आपको बरसात मिलती है और धूप बहुत ज्यादा कड़कते वाली होती है। तो इस हफ्ते तो लोगों ने जरूर पंखे, एयर कंडीशनर निकाल लिए होंगे, गर्मी इतनी लगी होगी। तो मैं समझ सकती हूँ आपकी उस हालत को, क्योंकि अब मौसम है तो उसका तो हमें कभी ज्यादा स्नो होती है तो कभी ज्यादा गर्मी होती है। जिंदगी का यही एक अनोखा मजा है। तो कव्वाली जो होती थी, एक जमाना था, वो एक जरूर हिस्सा था किसी भी मूवी में। तो पुराने वाले समय में ये अलग तरीके की जो होती थी, मुजरे वाले गाने होते थे। तो आजकल थोड़े ट्रेंड जो है वो बदला है। वो आजकल के जो यंग जनरेशन जिन जिस तरह का म्यूजिक पसंद करते हैं, तो फिर अपीलिंग म्यूजिक उनके लिए हो, आजकल उन्हीं के लिए ही उसी तरीके से बनाई जाती है। कई गाने हमारे जैसे ओल्ड लोगों के लिए भी होते हैं। वैसे तो यहाँ पे रहते हुए फिर ओल्डर लोग भी नए नए रंगों की तरफ, उनका भी कोई ज्यादा उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर नए नए गाने आते हैं तो वो उन्हीं को पसंद करने लग जाते हैं। तो फ्लेक्सिबल है, विच इज ग्रेट। तो आइए सुनिए ये गीत। और पहले बता दें, अगर आपको मूव होना है तो इसके मूवर 400 524 स्टार्ट 4465 2426704। आपने खाना खाना है, ऑर्डर करना है, लाइव कुकिंग करवानी है, तो इन न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे मौजूद है मिसिसागा में। तो आप अपना ऑर्डर बुक करने के लिए आप उनको कॉल कर सकते हैं 905-814-1730, 905-814-1730। और 30 मई को, यानी कि कल, स्काई डोम वालों का बहुत बड़े धूमधाम से उनका मेला होने जा रहा है, तो आप जरूर जाइएगा। स्काई डोम ऑटो वालों को आप कॉल कर सकते हैं 905-874-1878, 905-814-9878। तो आइए सुनिए ये गीत।

सुबह का समय समाप्त की तरफ है, मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। रात को भी आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे बढ़िया सा प्रोग्राम लेकर के 10 से 11 बजे। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने स्वादा कला।

सुखे हरे की एक माहे अमृत दृष्ट संच जीवाए काटे कस्तूरे सेवक को दीनी अपनी मिल गई सुनी मन आशा कई दया का सुजुर्दा सा दुखना से सुखाए समाए तीन ना पाई जाए दुर्मार पुरे दुर्मिले

दाते प्रभ गिर पाते भय सोहेले जन्म जन्म के बिछड़े मेले रहा सिमरत सिमरत प्रभ का नाम सगल रोग का विनसिया था सहज सुबाए बोले हर बाणी आठ पहर प्रभ सिमरो प्राणी

0: जिस सिमरत दुख सब जाए, नाम रतन बसै मन आए। जब मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन बखानी रहा। एक बिन नाही दूजा कोई, जाकी दृष्ट सदा सुख होए। साजन मीत सखा करे, हर हर मन महलेख। रब रहे सर्वत स्वामी, गुण गावे नानक अंतर जामे। गौरी मोहल्ला पंचमा, कोट बिगन हिरे खिन माहे। हर हर कथा साध सुना है, पीवत राम रस अमृत गुण जास। जब हर चरण मिट्टी खुदता, सर्व कल्याण सुख साजन धान।
1: जिलकोजी एंड विलियम्स पार्क वे मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-455-5333 पर कॉल कीजिए। 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
0: आखद मन रतन सब छाज, करना हार हृदय महताज। तज सब परम भजो पार, कह नानक अटल एहु धर्म। गौरी मोहल्ला पंजवां, सांत पई गुरु गोविंद पाई। ताप पाप बिन से मेरे पाई रहा।

गए पूरण पैसे रहा शीतला ते रखिया बिहारी पाक हम तब कृपा धारी नानक नाम जपै तू जीवै।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

नाम श्री वाहे गुरु साहेबा जी तनासरी महला पंजवा त्रिपत पई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम त्याया त्रिपत पई सच भोजन खाया

0: पंजाबी लहरां
1: प्रोग्राम समर्पित है रंगले पंजाब नूं
0: पंजाबी बोली ते पंजाबी सभ्याचार नूं
1: गुरु साहिबान पीरां फकीरां दी धरती नूं
0: ठंडियां छावां जीआं मावां नूं
1: चौड़ियां छातियां वाले गभरूआं नूं
0: चरखा कतदियां ते पींगां झूटदियां मुटियारां नूं
1: लोक गीतां भंगड़े अते गिद्धियां दीआं छणकारां नूं
0: प्रोग्राम पंजाबी लहरां
1: हफ्ते दे सत्ते दिन प्राइम टाइम ते पंजाबी लहरां पंजाबीयत दी सेवा विच
2: The views and opinions of the guests and sponsors are solely theirs and not that of the hosts or management of Punjabi Lehra. Punjabi Lehra is not responsible for any interactions our listeners have with any businesses advertised on our shows

0: लाइट्स नहीं आई, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो।
1: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम टू बम ट्रैफिक एंड बम टू बम कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज।
2: और रेडियो आवाज में तुसीं सारे शामिल शबानों अपनी कंपनी बारे दसांगे पहला सब तो।
3: ओके सर, हम है राइट विंडो फोर्स। हम लोग विंडोज और डोर्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जिसके अंदर हम ट्रिपल और डबल ग्लास दोनों तरीके के ग्लास देते हैं। विंडोज ज्यादातर मार्केट में बहुत तरीके के अमन जी, लेकिन जो असली विंडोज हैं जो वाकई कनाडा में काम करती हैं उसका कस्टमर कैसे पता लगाए? उसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि अगर उसके ऊपर एनर्जी स्टार का स्टिकर है, दैट मींस कि वो गवर्नमेंट ने सर्टिफाई की हुई विंडोज है, जिसके अंदर अगर टेम्परेचर -30 से भी नीचे जाता है तो आपके घर में एयर टाइटनेस रहेगी। एयर टाइटनेस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आपका फर्नेस चलता है तो उसकी हीट एस्केप होनी नहीं चाहिए आपकी विंडोज और डोर्स के थ्रू। तो जो एनर्जी स्टार सर्टिफिकेशन होती है वो काफी टफ प्रोसेस होता है जिसके अंदर लैब में टेस्टिंग होती है विंडोज की। सो हर विंडो जो है वो एनर्जी स्टार नहीं होती है और हर कंपनी करवा भी नहीं पाती है। सो अगर आप कभी विंडोज डोर्स चूज कर रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि वो विंडो एनर्जी स्टार है। दूसरी चीज ये है कि जो सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट होता है विंडो के अंदर वो होता है ग्लास का। तो ग्लास हम यूज करते हैं अमेरिकन ग्लास, जो कार्डिनल का ग्लास होता है, वो उसकी वारंटी 20 इयर्स होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम लाइफ टाइम वारंटी देते हैं, लेकिन जब अगर आप उनसे ग्लास का पूछेंगे तो ग्लास की नॉर्मली कैनेडियन ग्लास की 10 साल की ही वारंटी होती है, बट हम उसकी भी लाइफ टाइम वारंटी देते हैं आपको। सो अमेरिकन ग्लास हो गया। अब आजकल लॉक्स का बहुत चक्कर आ रहा है कि बहुत चाइनीज लॉक्स भी यूज हो रहे हैं, बहुत बहुत डिफरेंट तरीके के लॉक्स आते हैं, तो वो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? हम यूज करते हैं जर्मन लॉक्स जो रोटो कंपनी से आते हैं। आप अगर गूगल करेंगे रोटो, इट इज नंबर वन कंपनी फॉर विंडोज एंड डोर्स बोथ। उनमें वो कॉर्नर लॉक्स लगते हैं जिसमें साइड से मल्टी पॉइंट लॉक लगता है और विंडो कंप्लीटली एयर टाइट हो जाती है। सो अमेरिकन ग्लास हो गया, लॉक्स आपके जर्मन हो गए और फ्रेम्स कैनेडियन हो गए। ये बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है जो आपको रेयरली कहीं मिलेगा, क्योंकि हम अपनी विंडोज कस्टमर के ऊपर नहीं थोपते हैं कि हमने ये बनाया आपको ये प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। हम कस्टमर को अलग-अलग मेन्यू देते हैं, जैसे रेस्टोरेंट में आप चूज करते हो दाल लेनी है, रोटी लेनी है, पनीर लेना है, तो हम आपको सारी ऑप्शन देते हैं कि जी आपको ग्लास कौन सा चाहिए, आपको लॉकिंग मैकेनिज्म कौन सा चाहिए, आपको चुकाट तक हम आपको कौन सी चाहिए, हम वो भी ऑप्शन देते हैं जिसके अंदर वाइनल की चाहिए या वुड की चाहिए। सो मल्टीपल ऑप्शन है अमन जी। ज्यादा जानकारी के लिए
2: 400 16 200 6 4 6 3 2 0 0 4 6 3 2 0 0 4 6 3 2 0 0 4 6 3 2 0 0 4 6 3 2 0 0 4 6 3 2 0 0 4 6 3 2 0 0 4 6 3 2 0 0 4 6 3 2 0 0 4 6 3 2 0 0 4 6 3 2 0 0 4 6 3 2 0 0 4 6 3 2 0 0 4 6 3 2 0 0 4 6 3 2 0 0 4 6 3 2 0 0 4 6 3 2 0 0 4 6 3 2 0 0 4 6 3 2 0 0 4 6 3 2 0 0 4 6 3 2 0 0 4 6 3 2 0 0 4 6 3 2 0 0 4 6 3 2 0 0 4 6 3 2 0 0 4 6 3 2 0 0 4 6 3 2 0 0 4 6 3 2 0 0 4 6 3 2 0 0 4 6 3 2 0 0 4 6 3 2 0 0 ਉਹਦੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਉੱਡਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ?
4: ਲੇਡੀ ਬੱਗ।
2: ਆਹੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ?
4: ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ।
2: ਲੇਡੀ ਬੱਗ ਖਾਧੀਆਂ ਕਦੇ? ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਕਾ ਜੀ?
4: ਮੈਂ 11 ਸਾਲ।
2: 11 ਸਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਜਾਂਦੇ?
4: ਛੇਵੀਂ
2: ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਾਨੂ ਯੇ ਉਨਕੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਵਹਾਂ ਪੇ ਲਾ ਕੇ ਸਭੀ ਕੋ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਾਮ ਪੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਯੇ ਲੋਗ ਆਪਕੇ ਲਈ ਵੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਚਾਹੀਏ ਆਪਕੋ?
3: ਬੜੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ।
2: ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਸੋ ਸ਼ਿਵਾਨੂ ਦੇ ਆ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਸਟicker ਲੱਗੇ ਨੇ। ਠੰਡ ਤੇ ਗਰਮੀ ਜਿੰਨੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਅੰਦਰ ਆ
5: ਜੀ,
2: ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਟਾਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਠੰਡ ਕਿਹਦੀ ਅੰਦਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ।
5: ਠੀਕ
2: ਹੈ, ਸੋ ਸ਼ਿਵਾਨੂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ $50 to $70 ਐਮਬਰੇਜ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ
5: ਜੀ।
2: ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਓ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਿਵਾਨੂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦੀਜੀਏ।
3: 416-3200
2: ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 2500 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 20% ਡਾਊਨ ਦੇ ਕੇ?
3: ਅਮਨ ਭਾਈ, ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤੇ, ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚ ਕੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣਤੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ $95 ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ।

0: टाउन हाउस की बनती है रफली $60-70 पर मंथ के हिसाब से। अगर डिटैच घर होता है, डिटैच घर की तो कोई लिमिट ही नहीं है, 5 बेडरूम है, 6 बेडरूम, आई डोंट नो, सो उसकी भी, लेकिन तब भी $120-130 में हो जाता है।
1: ओके, थैंक यू। सो नंबर बोल दो एक बार फिर आपकी कंपनी का, और मैं दस दूं फाइनेंसिंग कोई छेती मार्केट च नहीं कर रहे, फाइनेंसिंग कर रहे ने, विंडो लाइव लेके आउणगे नाल, ते प्लस जिहड़ा हैगा तुहाडे लई लाइफ टाइम वारंटी। कितने टाइम की वारंटी है?
0: लाइफ टाइम 25 साल सर।
1: 25 साल। प्रोडक्ट कहाँ का है? मेड इन चाइना है?
0: नहीं सर, कुछ भी मेड इन चाइना नहीं है, जर्मन लॉक्स, अमेरिकन ग्लास और वाइनल पूरा कैनेडियन।
1: थैंक यू सो मच। नंबर फिर एक बार
0: अमन भाई, एक बात मैं जाते जाते बोलना चाहूंगा, बड़े पते की है, वो आपके लिए भी है, सबके लिए है, कि आप मेरे पास एक आपके ही लिसनर थे, वो बेचारे 1.5 साल से कोशिश कर रहे थे, सबकी अपनी स्ट्रगल्स होती है तो वो कर नहीं पा रहे थे। मैंने उनको ये बात समझाई कि अगर आप आज भी डिले कर रहे हो, आप ये समझो कि 15% रेट तो ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, आप उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बचाने के चक्कर में 15% लूज कर चुका है और आने वाली टाइम के अंदर बहुत तेजी से रेट ऊपर जाएंगे। तो आप ये सोच के कि जी अगले साल करा लें, अगले साल करा लेंगे, जो कीमत आज 10,000 की है वो परसों मतलब नेक्स्ट ईयर अगले साल 100% 12,500 होनी है। तो उस 2,500 को बचाने के चक्कर में मतलब नुकसान करवा लोगे आप अपना, तो इट्स बेटर कि आप कोर्ट लेके एटलीस्ट एसेस तो कर लो। मेरा ये कहना है।
1: शिवानी, दूजी गल ये है, महीने का बिल भी एक्स्ट्रा आ रहा है मेरे प्यारे।
0: बिल्कुल,
1: हाँ जी
0: बिल्कुल, जहाज के रेट ऊपर जा रहे हैं सर।
1: थैंक यू। नंबर बोल दो एक बार।
0: थैंक यू। 416-206-3200, 416-206-3200।
1: थैंक यू सो मच।

0: आओ 170 गिल्डन रोड जिन नंबर 17, 170 गिल्डन रोड जिन नंबर 17, टेलीफोन नंबर है 647-302-1322-347-302-1322 जेलो टायर सेंटर।
1: ड्राइवरी सूट कर दिया जट्टा नू
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381
5: Simply Indian brings you all simply delicious deals. Buy one, get one free every day. Sure 10 to sham 7 baje tak on dine-in and take-outs. Maza lavo Sunday no paratha plate. Monday, manpasand kulcha plate. Tuesday, chana

0: CanadaGoldRush.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: इधर चाहे नवे हों या पुराने, चाहे एक्टिव हों या पार्ट टाइम, या फिर तुसी सब तो वधिया ब्रोकरेज दी पाल वेचो, आज ही संपर्क करो टॉप फाइनेंशियल दे सिमराज सिद्धू दे नाल 416-457-3381 416-457-3381
2: हाय रब्बा हुण की बनू
3: जे तुसी कार इंजरी च इन्वॉल्व हो गए हो या सट लगी है गलती तुहाडी या किसी होर दी ता याद रखो इको नाम बरा टेंबर पर्सनल इंजरी लॉयर
4: इना कोल है पांच तड़लेदार कैनेडियन जंपर लॉयर्स दी टीम
3: जो दवांदे ने वध तो वध लीगल सेटलमेंट नो अपफ्रंट फी इना दी टीम हुण तक मिलियंस डॉलर तक की सेटलमेंट करा चुकी है ते पैसे सेटलमेंट तो बाद ही चार्ज करदे ने आज ही कॉल करो रूपा बराड़ होरा नु 416-991-5939 Barat Timber Personal Injury Lawyer Highway 10 and Derry 6980 Marty's Drive Unit 9 Mississauga
5: Hello AM 530 to tusi sun rahe ho apna Harman Pyara Radio Program Desh Pradesh Prime Time Radio pichle

आदाब नमस्कार प्यार सत्कार दे नाल सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग वापस आ गए हैं जी सारे जने आपां वीकेंड तुसीं इंजॉय कर रहे हो शनिवार दी शाम दी महफल दे विच एक बार फिर तो ट्यून इन कर चुके हो तुहाडा अपना प्रोग्राम रेडियो अंदाज थोड़ी अपनी होस्ट परम दे नाल मेरे वल्लों साडे सारे लिसनर्स नूं सारे परिवारां नूं बड़े अदब सत्कार दे नाल सत श्री अकाल बहुत सारा प्यार ढेर सारा सत्कार वेलकम जी आयां नूं खुशामदीद एंड स्वागतम

धड़कते दिलों और सुनते कानों को दानिश बुखारी का एक बार फिर से मोहब्बत भरा सलाम। आज फिर से आपके दिलों पर दस्तक देकर आपको थोड़ा सा मद होशी के आलम में ले जाने के लिए चलते हैं सुखनवरी की दुनिया में। शेर व शायरी से लबरेज और गजलों का ये मुख्तलिफ सिलसिला लेकर हाजिर हूँ कहकशां। दोस्तों ने दोस्तों से जब भी की दुश्मनी, दुश्मनों की दुश्मनी का हर गिला जाता रहा। समीन दोस्त दो दस्त से वाबस्ता होते हैं, यानी दो हाथ जब मिलते हैं तो दोस्ती का रिश्ता मुकम्मल सा हो जाता है। मगर कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो दुश्मनों से भी बदतर होते हैं। कुछ ऐसा ही एहसास है इस खूबसूरत गजल में, जिसे पुरसोज पुरनूर आवाज दी है जगजीत सिंह ने।

किसकी सदा ने फिर हमें बेचैन कर दिया, किसकी सदा ने फिर हमें बेचैन कर दिया, नगमात किसके नींद से हमको जगा गए, अपनी नजर में और समाता नहीं कोई, अब दिल में बस गए वो नजर में समा गए। समीन नजर अक्सर खूबसूरती और खूबसूरत रिश्तों को ही ढूंढना चाहती है, मगर नजर जब आईने का सामना करती है तो फिर रिश्तों और रास्तों को भी ढूंढना चाहती है। ऐसी ही एक गजल आपकी नजर करना चाहता हूं, जिसे बहुत ही खूबसूरत आवाज के साथ गाया है गुलाम अली ने।

0: गम है खुशी के साथ, अजल जिंदगी के साथ। गम है खुशी के साथ, अजल जिंदगी के साथ। दुनिया की तीरगी है हर एक रोशनी के साथ। उनकी जफा पे भी है वफा का गुमा मुझे, उनकी जफा पे भी है वफा का गुमा मुझे। रखते हैं दुश्मनी भी मगर दोस्ती के साथ। समीन इंसानी रिश्तों में अपनों के सिवा दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी, मगर कुछ बेमुराद ऐसे भी होते हैं जिनका ना तो कोई दोस्त होता है और ना ही कोई रकीब। कुछ ऐसी ही गजल आपकी नजर करना चाहता हूं जिसे बहुत ही बेहतरीन आवाज के साथ।
1: दिस इज AM 530 CHLO AM सर्विंग ब्रैम्पटन, मिसिसागा, टोरंटो, द GTA एंड द वर्ल्ड एट am530.ca। The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.